0: dumbass.
1: Catastrophic flash flood struck the Himalayan border between Nepal and China on Wednesday. Authorities said on Monday that the death toll from devastating flash floods and mudslides along the border had climbed to over 1,000, while nearly 4,800 people remained missing, including 853 foreigners. More than 90,000 people have been affected by the disaster.
2: अब क्या करेंगे कुछ भी नहीं है अब क्या करेंगे नगर पालिका में खाते हम लोग एक जना साथी को कमाते हैं सूटते हैं हम लोग अब क्या करेंगे नहीं करेंगे खुद आत्मा भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे ना करेंगे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है।